0: are watching India Today.
1: A draw for Portugal in a match that they should have won has become one of the biggest talking points in this FIFA World Cup. A team that had plenty of quality and their tallest figure is Cristiano Ronaldo failed to register what should have been an easy win. The spotlight was on the Portuguese superstar who looked lackluster and is facing scrutiny world over.
2: Those two not exactly seeing eye to eye either. And that is it. A frustrating start for Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo and for Portugal.
1: A Portuguese side that is expected to make waves in the 2026 FIFA World Cup was held to a frustrating 1-1 draw by the Democratic Republic of Congo. Cristiano Ronaldo, a certified great of the modern game, had a game to forget. He matched Leo Messi for featuring in 6 World Cup editions. But while Messi announced himself in the 2026 edition of the FIFA World Cup with a hat-trick, Ronaldo will have to wait to become the first player to score in 6 different World Cups. The 5-time Ballon d'Or winner is facing scrutiny for not helping his team's cause.
3: One thing that's important, people, please, at home. The team needs to score, not you need to score. If he goes into the six-yard box, you've been in that situation, Alexi. You would have had to follow him, and then it would have been a tap-in for Bruno Fernandes. But because he wants to score, he goes into the path of the back pass. You see both players, and it's easier for you to defend. And that's my thing. The team needs to score, not you. You saw the reaction of Bruno Fernandes behind going like, let it roll, make a run, create space so I can tap it in. It didn't happen.
1: The goalless draw against Congo only deepens Ronaldo's frustration. For the 5th straight World Cup match and the 10th consecutive game across major competitions, Cristiano has failed to find the net. But can't get it on. Surely, this was not the ideal start for him, but if Ronaldo and Portugal needed a wake-up call, they have it already. Sports Bureau, India Today. Manpreet Singh has become India's most capped hockey player ever. He gets his 413th international cap, surpassing the legendary Dilip Tirki. My colleague Rahul Rawat caught up with the former India hockey captain who now reflects on his journey and also tells us who's that sports person that he really looks up to.
4: Manpreet, peeche mudke dekhte ho aaj 2011-12 agar hum peeche chale jaye 12-14 saal peeche lagta hai ki yaar thoda sa ye dekha tha socha tha ki yaar ek din aisa aayega jab log mujhse ye pooch rahe honge main ek olympic do olympic medal jeet chuka hunga jisme se ek meri kaptani mein aayega. और आज दिलीप तिर्की जो खुद एक बड़े प्लेयर रहे हैं और आज हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, आज ये सोचा था कभी कि ऐसा भी दिन देखेंगे हम?
5: नहीं पजे, एक्चुअली अगर देखा जाए तो उस वक्त तो पता भी नहीं था कि हाँ कि इतना लंबा खेल पाएंगे. ठीक है, और एज ए यंगस्टर मैं टीम में आया था. ठीक है, 2011 में मैं टीम में सिलेक्टेड हुआ था, तो उस वक्त हम लोग फर्स्ट एशियन चैंपियन ट्रॉफी खेले थे, वो हम लोग जीते थे. फिर उसके बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट था मेरा ओलंपिक्स था, बट उसमें जो शुरुआत थी वो अच्छी नहीं हुई थी कि हम लोगों ने 12वें पे खत्म किया था. ठीक है, तो कोई भी मैच नहीं वहां पे जीत पाए. बट उसके बाद जो जर्नी है काफी अपसाइड डाउन रहे उसमें. 2014 में हम लोगों ने एशियन गोल्ड गेम्स में गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर जीता. फिर काफी टाइम के बाद जाके 2020 में फिर टोक्यो में हमारा जाके ब्रॉन्ज मेडल आया था.
4: पहली कमाई याद है जो सिलेक्शन होने के बाद जब आप खेले हो, मैच फीस मिली हो, याद है कितनी थी और क्या किया था?
5: एक्चुअली घर पे दिया था, क्योंकि डेफिनेटली कि हमारे सभी जैसे कि गांव में ऐसे ही होता है कि हाँ कि जो पहला कुछ भी आपको मिलता है वो आप अपने पेरेंट्स को देते हो कि हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होता है. तो मैंने
4: कितना मिला था याद है?
5: उस वक्त पहली बार हमें दिया था इन्होंने आई थिंक 25,000 दिया था. ठीक है, फिर बाद में HAL आ गई थी. ठीक है, फिर उसमें जो लीग का प्लेयर एज ए प्लेयर जो जितने में मैं बिका था उसका जो पैसा मिला था, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ कि इतने लाखों में मैं बिकूंगा. क्योंकि जब ऑक्शन होने वाली थी उस वक्त मेरे घर वालों ने सिर्फ सोचा था कि ये तो HAL हो रही है तो यंग प्लेयर है, ये तो कम से कम 3-4 लाख में या 5 लाख में बिकेगा। बट उस वक्त मैं जाके 2013 के बाद उस वक्त जाके मैं 36 लाख का बिका था, 36-34 का बिका था, ठीक है। तो घर वाले मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे कि हाँ कि मतलब सडन लाइक इतना महंगा ये बिका है। खुशी बहुत है, समझ में नहीं आ रहा था, बस खुशी से रो रहे थे सारा परिवार हमारा।
4: मनप्रीत, आपने हिंदुस्तान को, इंडियन हॉकी को एक, जो हम कह रहे, मैं बोल भी रहा था कि रिवाइव करने में ना आपने शुरुआत से देखा है। और जो लॉन्जिविटी की बात हम कर रहे थे, 4 ओलंपिक्स हो गए आपके, 12, 16, फिर 20 वाला जो 21 में खेला गया, जहां आपकी कप्तानी में इंडिया ने वो इतना लंबा, वो एक मेडल का, ओलंपिक मेडल का जो सूखा था उसको खत्म किया, फिर आप लोगों ने पेरिस में उसको रिपीट किया, एक और ओलंपिक्स अभी भी है, 33 साल आपकी उम्र है, फिटनेस आपके जो है हॉकी में वैसे ही फिटनेस स्टैंडर्ड्स, क्योंकि बहुत ही डिमांडिंग स्पोर्ट है, एक और ओलंपिक्स की चाह है अभी मन में?
5: बिल्कुल है, क्योंकि मेरा यही है कि हाँ कि अगर मैं फिट रहूं, जैसे मैं अभी फिट हूं, इसी को अगर कंटिन्यू कर पाया तो डेफिनेटली कि मैं एलए ओलंपिक का एम लेके जा रहा हूं। बट ये साल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम लोग के पास अभी वर्ल्ड कप है, उसके बाद एशियन गेम्स है,
4: एशियन
5: जहां से हम
4: गेम्स,
5: लोग डायरेक्टली ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये टूर्नामेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, पहले इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर, फिर उसके बाद फिर हम लोग ओलंपिक्स के ऊपर ध्यान देंगे। बट हाँ, अगर मैं फिट रहूंगा, अगर मैं फिट हूं कि हाँ कि उस लेवल पे खेल पा रहा हूं, तो तभी मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा और एलए तक जरूर जाऊंगा।
4: कोई रोल मॉडल है हॉकी के अलावा बाहर किसी खेल में या किसी भी
5: बिल्कुल,
4: चीज में?
5: मेरा फुटबॉल में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, मैं उसको बहुत क्लोजली देखता हूँ, और विराट है, ठीक है, क्योंकि विराट की फिटनेस, और विराट भी रोनाल्डो का फैन है, तो वो भी उसकी जो फिटनेस है, माइंडसेट है, उसको एडमायर करता है वो भी।
0: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
6: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
7: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
6: Learn more at emory.edu.
8: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
10: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
9: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
10: They score!
9: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: A city of dreams, a city of toppers, and now a city waiting for a second chance. As the NEET re-exam approaches on June 21st, anxiety is running high in Kota, the coaching capital of India.
1: Every year, almost over a lakh students enroll here in coaching centers. On the flip side, it's sometimes plummeted into depression and been infamous for suicides. But ahead of the NEET re-examination, what's the mood here? What are the students thinking? We go to the brainiest city of India to find out. Watch this special report.
0: Classes are packed once again. Students are back at their desks. But alongside preparations, there is uncertainty.
2: अब कभी पेपर लीक हो जा रहा है दो तीन साल से तो हर बार तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि अब ये गलत स्ट्रीम हो रहा है हमारे लिए कि हमें भी तो दो दो बार एग्जाम देना पड़ रहा है दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है कहीं ना कहीं गार्जियंस भी मोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चों को हमने इतना पढ़ाया दो साल मैंने मेहनत की बच्चों पे और फिर उनका तीन साल का ये एग्जाम का गैप और बढ़ गया
3: फिर से 20-22 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो उनका फिर अभी भी डर लगा हुआ है कि अगर लीक हो गया तो फिर हमारा क्या होगा इसमें बच्चों का फिर अगर एग्जाम के बाद बाई चांस लीक हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि फिर उनका फिर मन से अंदर से दिल टूट जाएगा फिर उन्हें कभी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा
0: Many had already finished with NEET. Some sold their books, others returned home. Then came the cancellation and the order for re-exam after a paper leak. A second round of preparation, a second round of stress.
4: मैक्सिमम बच्चे ऑलमोस्ट 80% बच्चे ऐसे थे जो डेडिकेटेड थे जिन्होंने सोचा था कि हाँ हमको कुछ और बेहतर करना है और उनके पास ये वाले जो एक महीने के आसपास का जो टाइम पीरियड मिल रहा था तो उसको देखते हुए वो बच्चे सब वापस कोटा आए टेस्ट यहाँ पर लगातार हो रहे हैं उसके लिए कोई एडिशनल किसी से पैसे नहीं लिए गए
5: अच्छा।
4: ये सब चीजें हैं जो हम लोग बच्चों की बेहतरी के लिए किया
0: But one question dominates conversations at tea stalls, libraries and coaching centers alike. Can the system guarantee a fair exam this time?
6: दो साल से ही कोटा में हम यहाँ दो साल से तैयारी कर रहे हैं अच्छे एग्जाम गया था वैसे लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा 21 तारीख को पेपर देंगे वापस दोबारा तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा तो भूल जाते हैं ना रिदम टूट गया था मतलब 8-10 दिन घर पे रहे उस टाइम हाँ तो उस टाइम मतलब घर पे पढ़ा वड़ा नहीं फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा 2-4 दिन लगे रिदम बनाने में
0: Amid the pressure, some are finding hope

0: उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था, और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो दो चार पाँच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि वो जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूँ कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
1: राज भर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं, और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, कर सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।

0: A city of dreams, a city of toppers. And now, a city waiting for a second chance. As the NEET re-exam approaches on June 21st, anxiety is running high in Kota, the coaching capital of India.
1: Every year, almost over a lakh students enroll here in coaching centres. On the flip side, it's sometimes plummeted into depression and been infamous for suicides. But ahead of the NEET re-examination, what's the mood here? What are the students thinking? We go to the brainiest city of India to find out. Watch this special report.
0: Classes are packed once again. Students are back at their desks. But alongside preparations, there is uncertainty.
2: अब कभी पेपर लीक हो जा रहा है दो तीन साल से तो हर बार तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि अब ये गलत स्ट्रीम हो रहा है हमारे लिए कि हमें भी तो दो दो बार एग्जाम देना पड़ रहा है दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है कहीं ना कहीं गार्जियंस भी मोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चों को हमने इतना पढ़ाया दो साल मैंने मेहनत की बच्चों पे और फिर उनका तीन साल का ये एग्जाम का गैप और बढ़ गया
3: फिर से 20-22 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो उनका फिर अभी भी डर लगा हुआ है कि अगर लीक हो गया तो फिर हमारा क्या होगा इसमें बच्चों का फिर अगर एग्जाम के बाद बाई चांस लीक हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि फिर उनका फिर मन से अंदर से दिल टूट जाएगा फिर उन्हें कभी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा
0: Many had already finished with NEET. Some sold their books, others returned home. Then came the cancellation and the order for re-exam after a paper leak. A second round of preparation, a second round of stress.
4: मैक्सिमम बच्चे ऑलमोस्ट 80% बच्चे ऐसे थे जो डेडिकेटेड थे जिन्होंने सोचा था कि हाँ हमको कुछ और बेहतर करना है और उनके पास ये वाले जो एक महीने के आसपास का जो टाइम पीरियड मिल रहा था तो उसको देखते हुए वो बच्चे सब वापस कोटा आए टेस्ट यहाँ पर लगातार हो रहे हैं उसके लिए कोई एडिशनल किसी से पैसे नहीं लिए गए
5: अच्छा।
4: ये सब चीजें हैं जो हम लोग बच्चों की बेहतरी के लिए किया
0: But one question dominates conversations at tea stalls, libraries and coaching centers alike. Can the system guarantee a fair exam this time?
6: दो साल से ही कोटा में हम यहाँ दो साल से तैयारी कर रहे हैं अच्छा एग्जाम गया था वैसे लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा 21 तारीख को पेपर देंगे वापस दोबारा तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा तो भूल जाते हैं ना रिदम टूट गया था मतलब 8-10 दिन घर पे रहे उस टाइम हाँ तो उस टाइम मतलब घर पे पढ़ा वड़ा नहीं फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा 2-4 दिन लगे रिदम बनाने में
0: Amid the pressure, some are finding hope through music.

0: Also, to get our alignment right and our sanity restored, we flew down to Bangalore to experience Purantha, where we got a warm welcome and bahut sara pyar.
1: मैं उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सुपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा. आज जो दो चार पांच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है. तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूं कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है.
2: राज भारजी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए. अब चुनाव आया है, कर सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं. यही तो धंधा है इन लोगों का.

0: मैं उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था, और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो दो चार पाँच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि वो जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूँ कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
1: राज भारजी ऐसी बकवास करते रहते हैं, और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, क्या सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।
2: बच्चे कब से गायब हैं?
3: 4 बजे निकले थे रेडियो स्टेशन के लिए, 7 बजे सुमन का प्रोग्राम था।
2: पर साहिल और सुमन वहां पहुंचे ही नहीं।
4: Long before true crime became binge-worthy content, one case shook India to its core. In 1978, the kidnapping and murder of teenagers Geeta and Sanjay Chopra horrified the nation and became one of the country's most infamous criminal investigations.
5: सरदार जी के साथ स्कूटर पर देखा गया था और शायद मल्टीपल टाइम्स अटैक किया गया।
4: रंगा बिल्ला केस। किसी एक आदमी का काम है। Nearly 5 decades later, Prime Video revisits the dark chapter with its new investigative thriller, Rock.
6: तूने वादा किया था दिल्ली से निकल रहे हम।
7: लेकिन दिल्ली को एक आखिरी अलविदा तो बनता है ना मेरी जान।
4: Set in the late 1970s Delhi, before mobile phones, CCTV cameras or digital forensics, Rock follows the investigation that unfolds after two teenagers disappear without a trace. Panic grips the city, a determined police team races against time to uncover the truth.
8: खुला घूम रहा है वो जानवर, कब पकड़ेंगे आप इसे?
2: ये एक शैतान का काम है सर।
4: Inspired by the real life Ranga Billa case, the series fictionalizes events while exploring the emotional and social impact of the tragedy.
9: पिता आर्मी में हाई पोस्ट पे और माँ स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को, जहाँ बच्चे हैं।
4: Ali Fazal leads the cast as Sub-Inspector Jay Prakash, the officer heading the investigation.
10: Bombay?
4: Sonali Bendre plays Mona Arora, while Amir Bashir portrays Lieutenant Colonel Ashok Arora. Parents struggling to cope with unimaginable loss. The ensemble cast also includes Rakesh Bedi, Divyendu Bhattacharya, Anshul Chauhan, Akash Makhija and Ramandeep Yadav. The real-life crime remains one of India's most disturbing cases, sparking a nationwide conversation about crime and public safety.

0: A city of dreams, a city of toppers, and now a city waiting for a second chance. As the NEET re-exam approaches on June 21st, anxiety is running high in Kota, the coaching capital of India.
1: Every year, almost over a lakh students enroll here in coaching centers. On the flip side, it's sometimes plummeted into depression and been infamous for suicides. But ahead of the NEET re-examination, what's the mood here? What are the students thinking? We go to the brainiest city of India to find out. Watch this special report.
0: Classes are packed once again. Students are back at their desks. But alongside preparations, there is uncertainty.
2: अब कभी पेपर लीक हो जा रहा है दो तीन साल से तो हर बार तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि अब ये गलत स्ट्रीम हो रहा है हमारे लिए कि हमें भी तो दो दो बार एग्जाम देना पड़ रहा है दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है कहीं ना कहीं गार्जियंस भी मोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चों को हमने इतना पढ़ाया दो साल मैंने मेहनत की बच्चों पे और फिर उनका तीन साल का ये एग्जाम का गैप और बढ़ गया
3: फिर से 20-22 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो उनका फिर अभी भी डर लगा हुआ है कि अगर लीक हो गया तो फिर हमारा क्या होगा इसमें बच्चों का फिर अगर एग्जाम के बाद बाई चांस लीक हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि फिर उनका फिर मन से अंदर से दिल टूट जाएगा फिर उन्हें कभी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा
0: Many had already finished with NEET. Some sold their books, others returned home. Then came the cancellation and the order for re-exam after a paper leak. A second round of preparation, a second round of stress.
4: मैक्सिमम बच्चे ऑलमोस्ट 80% बच्चे ऐसे थे जो डेडिकेटेड थे जिन्होंने सोचा था कि हाँ हमको कुछ और बेहतर करना है और उनके पास ये वाले जो एक महीने के आसपास का जो टाइम पीरियड मिल रहा था तो उसको देखते हुए वो बच्चे सब वापस कोटा आए टेस्ट यहाँ पर लगातार हो रहे हैं उसके लिए कोई एडिशनल किसी से पैसे नहीं लिए गए अच्छा। ये सब चीजें हैं जो हम लोग बच्चों की बेहतरी के लिए किया
0: But one question dominates conversations at tea stalls, libraries and coaching centers alike. Can the system guarantee a fair exam this time?
5: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: मैं उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था, और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो दो चार पाँच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि वो जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूँ कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
1: राज भर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं, और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, क्या सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।
2: बच्चे कब से गायब हैं?
3: 4 बजे निकले थे रेडियो स्टेशन के लिए, 7 बजे सुमन का प्रोग्राम था।
2: पर साहिल और सुमन वहां पहुंचे ही नहीं।
4: Long before true crime became binge-worthy content, one case shook India to its core. In 1978, the kidnapping and murder of teenagers Geeta and Sanjay Chopra horrified the nation and became one of the country's most infamous criminal investigations.
5: सरदार जी के साथ स्कूटर पर देखा गया था और शायद मल्टीपल टाइम्स अटैक किया गया।
4: रंगा बिल्ला केस। Nearly 5 decades later, Prime Video revisits the dark chapter with its new investigative thriller Rock.
6: तूने वादा किया था दिल्ली से निकल रहे हूँ।
7: लेकिन दिल्ली को एक आखिरी अलविदा तो बनता है ना मेरी जान।
4: Set in the late 1970s Delhi, before mobile phones, CCTV cameras or digital forensics, Rock follows the investigation that unfolds after two teenagers disappear without a trace. Panic grips the city. A determined police team races against time to uncover the truth.
2: काला पानी भी चखने होते यारों।
8: खुला घूम रहा है वो जानवर। कब पकड़ेंगे आप इसे?
2: ये एक शैतान का काम है सर।
4: Inspired by the real-life Rangabilla case, the series fictionalizes events while exploring the emotional and social impact of the tragedy.
9: इत आर्मी में हाई पोस्ट पे और मां स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को, जहां बच्चे हैं।
4: Ali Fazal leads the cast as Sub-Inspector Jay Prakash, the officer heading the investigation.
10: Bombay?
4: Sonali Bendre plays Mona Arora, while Amir Bashir portrays Lieutenant Colonel Ashok Arora. Parents struggling to cope with unimaginable loss. The ensemble cast also includes Rakesh Bedi, Divyendu Bhattacharya, Anshul Chauhan, Akash Makhija and Ramandeep Yadav. The real-life crime remains one of India's most disturbing cases, sparking a nationwide conversation about crime and public safety.

0: A city of dreams, a city of toppers. And now, a city waiting for a second chance. As the NEET re-exam approaches on June 21st, anxiety is running high in Kota, the coaching capital of India.
1: Every year, almost over a lakh students enroll here in coaching centres. On the flip side, it's sometimes plummeted into depression and been infamous for suicides. But ahead of the NEET re-examination, what's the mood here? What are the students thinking? We go to the brainiest city of India to find out. Watch this special report.
0: Classes are packed once again. Students are back at their desks. But alongside preparations, there is uncertainty.
2: अब कभी पेपर लीक हो जा रहा है दो तीन साल से तो हर बार तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि अब ये गलत स्ट्रीम हो रहा है हमारे लिए कि हमें भी तो दो दो बार एग्जाम देना पड़ रहा है दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है कहीं ना कहीं गार्जियंस भी मोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चों को हमने इतना पढ़ाया दो साल मैंने मेहनत की बच्चों पे और फिर उनका तीन साल का ये एग्जाम का गैप और बढ़ गया
3: फिर से 20-22 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो उनका फिर अभी भी डर लगा हुआ है कि अगर लीक हो गया तो फिर हमारा क्या होगा इसमें बच्चों का फिर अगर एग्जाम के बाद बाई चांस लीक हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि फिर उनका फिर मन से अंदर से दिल टूट जाएगा फिर उन्हें कभी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा
0: Many had already finished with NEET. Some sold their books, others returned home. Then came the cancellation and the order for re-exam after a paper leak. A second round of preparation, a second round of stress.
4: मैक्सिमम बच्चे ऑलमोस्ट 80% बच्चे ऐसे थे जो डेडिकेटेड थे जिन्होंने सोचा था कि हाँ हमको कुछ और बेहतर करना है और उनके पास ये वाले जो एक महीने के आसपास का जो टाइम पीरियड मिल रहा था तो उसको देखते हुए वो बच्चे सब वापस कोटा आए टेस्ट यहाँ पर लगातार हो रहे हैं उसके लिए कोई एडिशनल किसी से पैसे नहीं लिए गए
5: अच्छा।
4: ये सब चीजें हैं जो हम लोग बच्चों की बेहतरी के लिए किया
0: But one question dominates conversations at tea stalls, libraries and coaching centers alike. Can the system guarantee a fair exam this time?
6: दो साल से ही कोटा में हम यहाँ दो साल से तैयारी कर रहे हैं अच्छा एग्जाम गया था वैसे लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा 21 तारीख को पेपर देंगे वापस दोबारा तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा तो भूल जाते हैं ना रिदम टूट गया था मतलब 8-10 दिन घर पे रहे उस टाइम हाँ तो उस टाइम मतलब घर पे पढ़ा वड़ा नहीं फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा 2-4 दिन लगे रिदम बनाने में
0: Amid the pressure, some are finding hope

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
2: तो आपने देखी हमारी ओमेगा 3 की रील, आप पहुंच गए एक केमिस्ट और कहा कि भाई हमें भी ओमेगा 3 दे दीजिए। पर फिर शुरू हुआ दूसरा संकट। 500 रुपए से लेकर 5000 तक के ओमेगा 3 मार्केट में मिलते हैं, आपको कौन सा लेना है? ये दुविधा सॉल्व करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया। For this video, we've spoken with Dr. Anoop Mishra. He's India's best-known endocrinologist at Fortis Hospital. And also, we've spoken with Dr. Vivek Kumar, Director of Interventional Cardiology and Head of Structural Heart Program at Max Super Speciality Hospital in Vaishali. Number one thing to check, EPA or DHA ka mark zarur check kariye, not just fish oil. Also, remember, ye number jo aage likha hota hai na, 1000 mg, 1200 mg, that is the total fish oil content or algae oil inside the capsule. This does not represent the amount of omega-3 in each capsule. So what matters is how much EPA and DHA is inside this capsule. It should be at least 500 mg per serving. ये check कैसे करेंगे? इसको check करने के लिए सबसे पहले अपने bottle के पीछे देखिए, इसमें आपको लिखा होगा. Like we said, at least 500 होना चाहिए. पर आपकी requirement किसी और के रिक्वायरमेंट से डिफरेंट हो सकती है. अपने डॉक्टर से पूछे कि आपके टेस्ट के हिसाब से आपको कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए. द सेकंड थिंग टू रिमेंबर इज दैट ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स कम इन टू मेन फॉर्म्स, ट्राइग्लिसराइड एंड ऑल्सो इथाइल एस्टर. ट्राइग्लिसराइड जो होता है, इट्स अ नेचुरल फॉर्म, योर बॉडी अब्सॉर्ब्स इट सिग्निफिकेंटली बेटर. बट इथाइल एस्टर बुरा नहीं है, इट्स गुड टू, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म. बट इससे पहले आपको लगे ट्राइग्लिसराइड तो बहुत बुरी चीज होती है आपके कोलेस्ट्रॉल के अंदर, प्लीज अंडरस्टैंड दैट ट्राइग्लिसराइड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट इन द बॉडी, बट इन एक्सेस अमाउंट्स दे मे बी हार्मफुल. जो ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, दे आर सिंपली द नेचुरल डिलीवरी फॉर्म ऑफ हेल्दी फैट्स. अब आते हैं वेजिटेरियंस के ऊपर जो फिश ऑयल नहीं लेते हैं. नाउ दैट इज नॉट द ओनली ऑप्शन, हमने आपको पहले बताया था एल्गी बेस्ड ओमेगा 3 भी होता है, इट्स अ गुड ऑप्शन, इट्स अ प्लांट बेस्ड सस्टेनेबल ऑप्शन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर व्हेन यू आर बाइंग ओमेगा 3 मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स इज दिस. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्टी टेस्टिंग सर्टिफिकेट चेक करना. IFOS होता है, USP होता है और NSF होता है. बट बैड न्यूज इज दैट मोस्ट इंडियन ब्रांड्स वोंट हैव दीज. तो इंडिया में आपको कौन सी चीजें देखनी है? आपको चेक करना है GMP, FSSAI, ISO 22000 एंड HACCP. अब ये देखिए ग्लोबल स्टैंडर्ड जितने तो नहीं है, लेकिन ये आपको बता देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेफ है कि नहीं. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ओमेगा 3 आप जब भी ले रहे हैं, हमेशा हैव इट विद योर फूड जस्ट बिफोर और ड्यूरिंग द मील, बिकॉज दैट हेल्प्स इन बेटर डिजेशन एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ ओमेगा 3. अगर आपको कोई ऐसा ब्रांड मिले विच चेक्स आउट ऑन ऑल दीज काउंट्स, तो हमें भी उसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में बताइए.
1: India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.

0: राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Big news coming in about Bengal and the rebel MPs. Sources are telling India Today speaker likely to decide soon on the plea by the 20 TMC MPs. The decision expected before the upcoming monsoon session of Parliament. Speaker to rule on the petition seeking separate seating arrangements. So a separate seating arrangement where the TMC MPs usually sit. Recognition of the members of now as the NCPI, as they're merging with their little-known outfit, the NCPI. Speaker already has heard submissions from both sides. Have already decided on the DMK's plea to sit separately from the India bloc. DMK MPs will be allotted separate seating during the monsoon session. So it's going to be very interesting. Third week of July, what really happens? Himanshu Mishra joins us for the latest on that. Himanshu, ye hume bataiye, kis tarah se hum jo hai faisla speaker ka ispe expect kar sakte hain? Kya agenda rahenge jis par speaker Om Birla batayenge?
1: देखिए स्पीकर ओम बिरला ने आज अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी के जो सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला, उन्होंने अपनी बात रखी। जिस तरीके से 20 सांसदों ने एक चिट्ठी दी है कि वो एनसीपीआई के अंदर जो है अपनी 20 सांसदों को जो है वो विलय करना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी जो है वो विचारधारा से भटक गई है और उसके साथ साथ पार्टी के अंदर जो है किसी की बातचीत को नहीं सुना जा रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जो है वो पार्टी के जो संविधान है उसके अनुरूप नहीं चल रही है, इसीलिए वो एनसीपीआई के अंदर अपनी मर्जर कर रहे हैं। और आज टीएमसी का पक्ष जो है, ममता बनर्जी वाली टीएमसी के पक्ष को रखने के लिए अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया था, साथ ही साथ जो है उनके साथ जो है अभिषेक बैनर्जी के साथ साथ कल्याण बैनर्जी और अन्य सांसद वहां पर मौजूद थे। उन्होंने इस पक्ष को रखा कि शेड्यूल 10 के तहत जो है आप किसी को भी किसी दूसरी पार्टी में मर्जर के लिए नहीं कह सकते। और उसके साथ साथ जो है सुभाष देसाई वर्सेस महाराष्ट्र राज्यपाल का जो मामला है उसकी भी जो है विवेचना उन्होंने की। अब देखना यह है स्पीकर ने, क्योंकि दोनों ही पक्षों की, टीएमसी के बागी सांसदों की भी पक्ष को सुना है, उनके पत्र को भी लिया है और दूसरी तरफ जो है अभिषेक बैनर्जी और उनके पक्ष को ले लिया है। अब जल्दी ही जो है स्पीकर इस पे फैसला देंगे कि क्या मर्जर सही है या नहीं है। अगर किसी के भी खिलाफ ये फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट ये मैटर जाएगा स्पीकर के फैसले के बाद, ये तय है। इसके साथ साथ डीएमके ने
0: समझना चाहती थी क्या अभिषेक बैनर्जी और जो टीएमसी साइड है ममता बैनर्जी की, उन्होंने आकर अपना पक्ष दे दिया है स्पीकर को?
1: बिल्कुल, उन्होंने अपना पक्ष दे दिया। आज 5 बजे उनको मिलना था, पूरा प्रतिनिधि मंडल मिला। डीएमके की मांग जो है कि कांग्रेस के साथ उनकी जो सिटिंग एरिया है, अरेंजमेंट है लोकसभा में, उसको उनसे अलग किया जाए, उस बात पर भी स्पीकर ने विचार कर लिया और जल्दी दोनों चीजें।
0: हिमांशु, दिस इज क्लियरली बी गोइंग टू बी वन इंटरेस्टिंग मॉनसून सेशन, स्पेशली व्हेन द सीटिंग अरेंजमेंट वुड बी डिफरेंट। द सेम टीएमसी एमपीज बट नाउ एज एनसीपीआई वुड बी सिटिंग ऑन अ डिफरेंट बेंच। वी विल बी ट्रैकिंग दैट एंड मोर। ऑन दैट नोट आई एम रैपिंग अप दिस बुलेटिन ऑफ टू द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच watching. Stay tuned, coming up at 8 p.m. Gaurav Sawant.

0: A city of dreams, a city of toppers, and now a city waiting for a second chance. As the NEET re-exam approaches on June 21st, anxiety is running high in Kota, the coaching capital of India.
1: Every year, almost over a lakh students enroll here in coaching centers. On the flip side, it's sometimes plummeted into depression and been infamous for suicides. But ahead of the NEET re-examination, what's the mood here? What are the students thinking? We go to the brainiest city of India to find out. Watch this special report.
0: Classes are packed once again. Students are back at their desks. But alongside preparations, there is uncertainty.
2: अब कभी पेपर लीक हो जा रहा है दो तीन साल से तो हर बार तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि अब ये गलत स्ट्रीम हो रहा है हमारे लिए कि हमें भी तो दो दो बार एग्जाम देना पड़ रहा है दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है कहीं ना कहीं गार्जियंस भी मोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चों को हमने इतना पढ़ाया दो साल मैंने मेहनत की बच्चों पे और फिर उनका तीन साल का ये एग्जाम का गैप और बढ़ गया
3: फिर से 20-22 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो उनका फिर अभी भी डर लगा हुआ है कि अगर लीक हो गया तो फिर हमारा क्या होगा इसमें बच्चों का भी अगर एग्जाम के बाद बाई चांस लीक हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि फिर उनका फिर मन से अंदर से दिल टूट जाएगा फिर उन्हें कभी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा
0: Many had already finished with NEET. Some sold their books, others returned home. Then came the cancellation and the order for re-exam after a paper leak. A second round of preparation, a second round of stress. But one question dominates conversations at tea stalls, libraries and coaching centers alike. Can the system guarantee a fair exam this time?
4: दो साल से ही कोटा में हम यहाँ दो साल से तैयारी कर रहे हैं अच्छा एग्जाम गया था वैसे लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा 21 तारीख को पेपर देने वापस दोबारा तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा तो भूल जाते हैं ना रिदम टूट गया था मतलब 8-10 दिन घर पे रहे उस टाइम हाँ तो उस टाइम मतलब घर पे पढ़ा वड़ा नहीं फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा 2-4 दिन लगे रिदम बनाने में
5: माय डियर शेयर होल्डर्स विद ग्रेट डिलाइट लेट मी टेल यू दैट द बोर्ड ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स हैज अप्रूव्ड द ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस अर्लियर टुडे एंड इट विल बी फाइल्ड with SEBI today. This is a deeply emotional moment for me, for the entire Reliance family, and for millions of its shareholders. The relationship Reliance shares with its shareholders is a deep and sacred relationship founded on pride, trust, respect, and shared growth. The commitment to shared growth was deeply personal to Dhirubhai. It is equally sacred to me. Imbibed in the same spirit, Isha, Akash and Anant are heading the Jio IPO process and will lead the next generation of value creation opportunities in the future. The proposed listing of Jio will demonstrate to the world that India can build technology companies of global scale, global capability and global value. I assure you and all prospective new investors that a brighter future awaits Jio.
6: Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.

0: Mumbai is staring at one of its worst water crises in recent years. The city that never sleeps is now counting every drop. The BMC has announced it will suspend water supply to construction sites and swimming pools and impose a 20% cut in supply to industrial and commercial establishments. The move comes amid monsoon rains getting delayed. Alarmingly, the water levels in the seven lakes supplying the city have fallen to 10.35% of their total capacity. The situation is especially dire for the most vulnerable sections, which includes labourers and construction site workers.
1: BMC water is mainly for the bathing and drinking purposes of the labourers. And if BMC decides to stop it, it will have an impact on the construction of the project, because labourers are our main strength. And if we have already faced an issue due to the LPG crisis ongoing, and if BMC decides to stop BMC water, then it will have a drastic effect not only on the construction, you can say on the developer also.
0: The construction sector is badly hit.
2: तो नागरिकों को घर मिलने में इसमें लेट हो सकता है, भाड़ा मिलने में लेट हो सकता है, तो प्रशासन से हमारी एक रिक्वेस्ट भी है कि इस निर्णय पे विचार भी होना चाहिए.
3: वाटर शॉर्टेज की वजह से वो लोग को और सारा पानी बाहर से मंगाना पड़ रहा है करके, इस वजह से पूरा पीने का और जो यूटिलिटी पानी का है उसके ऊपर भी काफी सारा असर गिर रहा है करके.
0: Asia's richest civic body has already enforced a 10% citywide water cut that has been enforced since May 15th. Mumbai's water tankers were stretched due to these curbs. But these fresh restrictions will add pressure to an already strained commercial tanker supply system.
4: जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सपुत्र को ऐतिहासिक वोटों से हराया था, और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा. आज जो दो चार पांच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है. तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूं कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है.
5: राज भाजी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए. अब चुनाव आया है, कल सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं. यही तो धंधा है इन लोगों का.

0: राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: Approaches on June 21st, anxiety is running high in Kota, the coaching capital of India.
2: Every year, almost over a lakh students enroll here in coaching centers. On the flip side, it's sometimes plummeted into depression and been infamous for suicides. But ahead of the NEET re-examination, what's the mood here? What are the students thinking? We go to the brainiest city of India to find out. Watch this special report.
1: Classes are packed once again. Students are back at their desks. But alongside preparations, there is uncertainty.
3: अब कभी पेपर लीक हो जा रहा है दो तीन साल से, तो हर बार तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि अब ये गलत स्ट्रीम हो रहा है हमारे लिए, कि हमें भी तो दो दो बार एग्जाम देना पड़ रहा है, दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं गार्जियंस भी मोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चों को हमने इतना पढ़ाया, दो साल मैंने मेहनत की बच्चों पे, और फिर उनका तीन साल का ये एग्जाम का गैप और बढ़ गया।
4: फिर से 20-22 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, तो उनका फिर अभी भी डर लगा हुआ है कि अगर लीक हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। इसमें बच्चों का फिर अगर एग्जाम के बाद बाई चांस लीक हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि फिर उनका फिर मन से अंदर से दिल टूट जाएगा, फिर उन्हें कभी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा।
1: Many had already finished with NEET. Some sold their books, others returned home. Then came the cancellation and the order for re-exam after a paper leak. A second round of preparation, a second round of stress.
5: Thanks.
1: But one question dominates conversations at tea stalls, libraries and coaching centers alike. Can the system guarantee a fair exam this time?
6: दो साल से ही कोटा में हम यहाँ, दो साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम गया था वैसे, लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा, 21 तारीख को पेपर देने वापस दोबारा। तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना, मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा, तो भूल जाते हैं ना, रिदम टूट गया था। मतलब 8-10 दिन घर पे रहे उस टाइम, हाँ हाँ, तो उस टाइम मतलब घर पे पढ़ा वड़ा नहीं, फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा 2-4 दिन लगे रिदम बनाने में।

0: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
1: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
0: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: आज जो दो चार पांच दिन से लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूं कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
3: राज भाजी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, कि सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।
4: बच्चे कब से गायब हैं?
5: 4 बजे निकले थे रेडियो स्टेशन के लिए, 7 बजे सुमन का प्रोग्राम था।
4: पर साहिल और सुमन वहां पहुंचे ही नहीं।
6: Long before true crime became binge-worthy content, one case shook India to its core. In 1978, the kidnapping and murder of teenagers Geeta and Sanjay Chopra horrified the nation and became one of the country's most infamous criminal investigations.
7: Sardar ji ke saath scooter par dekha gaya tha aur shayad multiple times attack kiya gaya.
6: Ranga Billa case. Nearly 5 decades later, Prime Video revisits the dark chapter with its new investigative thriller Rock.
8: तूने वादा किया था दिल्ली से निकल रहे हम,
9: लेकिन दिल्ली को एक आखिरी अलविदा तो बनता है ना मेरी जान।
6: Set in the late 1970s Delhi, before mobile phones, CCTV cameras or digital forensics, Rock follows the investigation that unfolds after two teenagers disappear without a trace. Panic grips the city, a determined police team races against time to uncover the truth.
10: खुला घूम रहा है वो जानवर, कब पकड़ेंगे आप इसे?
4: ये एक शैतान का काम है सर।
6: Inspired by the real life Ranga Billa case, the series fictionalizes events while exploring the emotional and social impact of the tragedy.
11: पिता आर्मी में हाई पोस्ट पे और माँ स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को, जहाँ बच्चे हैं।
6: Ali Fazal leads the cast as Sub-Inspector Jay Prakash, the officer heading the investigation.
12: Bombay?
6: Sonali Bendre plays Mona Arora, while Amir Bashir portrays Lieutenant Colonel Ashok Arora. Parents struggling to cope with unimaginable loss. The ensemble cast also includes Rakesh Bedi, Divyendu Bhattacharya, Anshul Chauhan, Akash Makhija and Ramandeep Yadav. The real-life crime remains one of India's most disturbing cases, sparking a nationwide conversation about crime and public safety.

0: सर एमपीस के बाद अभी एमएलए भी चर्चा में आ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है?
1: ये तो बोलेंगे ट्रंप भी फूट रहा है। हाँ यही बोलना वाक्य है ना, इतना शिंदे बोलेंगे अभी ट्रंप भी हमारे पार्टी में आ रहे हैं, हमने उनको भी तोड़ा है, हमने उसको भी 50 करोड़ दिया है जी। ये कुछ भी बोल सकते हैं
0: जी,
1: उनको बोलने दीजिए। ऐसा है कि जब आदमी की गिदड़ की मौत आती है ना, तो क्या होता है आपको मालूम है ना, ये गिदड़ की मौत अब दिख रही है।

0: ये लो इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: भाई तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: भाई तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।